सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा के हा, सो कर के हा, जित बह सर्ब संभाले, वाजे तेरे नाथ अनेक असंखा, केते तेरे वावन हारे।

सुंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहन या मन मोहन सुरग मच्छ पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठसठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रख

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईयां, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईयां, तुद बिन सिद्धि किनै न पाईया, कर्म मिलै नाहीं ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सुवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागै भूख, पुत भूखै खाए चलियह दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न हुवै घाट न जाए, ना उह मरै।

मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परदास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन

शैल पत्थर मह जंत उपाई, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सुतरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्त हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया।

मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अस्त सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सत बल जाइए तेरा अंत न

सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा, सब त्याव है सब त्याव है तुद जी। हर सच्चे सिरजन हारा, सब जी तुम्हारे जी। तू जिया का दातारा, हर त्याव हुसन तुह जी। सब दुख विसारण हारा,

हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबू, आप हाथ दै मुहे बचाबो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै कर तारा, मोरच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आसंगरिए, पूर्ण हुए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाट कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उवरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो।

नाहीं करती रह। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आय वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहू, जिस दियां ए वडियाइया। कह नानक सुनहु संतो, शब्द धरहु प्यारू। साचा नाम मेरा आधारू, वाजे पंच सब तित घर सुभागै। घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल, कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम, हर कह लागे। कह नानक तै सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे। अनद सुनहु वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे।

तिस स्यों कैसा भूलना जे आपे जाने जान चीरी जाकी ना फिरे साहिब सो परवान।

0: प्रभु का सिमरन हर गुण बानी प्रभु का सिमरन सहज सम्मानी
1: प्रभु का सिमरन निर्चल आसन प्रभु का सिमरन कमल विगासन
0: प्रभु का सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन।

0: सुपदि जह मात पिता सतमीत न पाई मनुहा नाम तेरा संग सहाई जह मुश्किल होवे अत पारी हर को नाम खिन माहे उधारी गुरमुख नाम जपहु मन मेरे नानक पाव हो सूख कनेरे लाख करोड़ी बंध न पर हर का नाम जपत निस्तर जेह मार्ग एहु जात एकेला तह हर नाम संग होत सुहेला
1: ऐसा नाम मन सदा दे आईए नाम गुरमुख परंगत पाईए
0: टूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराही
1: अनक विघन जय आय सुंदर हर का नाम तत्काल उधार
0: अनक जोन जन मैं मर जाम नाम जपत पावे विश्राम
1: मल कबू न धोवे हर का नाम कोट पाव खोवे
0: ऐसा नाम जपहु मन रंग नानक पाईए साध कै संग।

0: जय महाप्रयान तपत बह काम तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम संत जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात
1: हर जन के हर नाम निदान की
0: मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत विवेक हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब पर न भंग हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नहीं वियोग
1: नानक पूजा हर हर देवा
0: हर हर जन के मल खजीना हर तन जन को आप प्रभ दीना
1: हर हर जन के उठानी हर प्रताप जन अवर न जानी
0: पोत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते
1: जन हर हर का भगत प्रकट नहीं छपे
0: हर की भगत मुक्त बोह करे नानक जन संग के ते तरे
1: जाते हर को नाम कामते हर हर गुण गानो
0: सब दे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा
1: संत
0: का संग वड भागी पाई है संत की सेवा

0: पिंगल
1: पर्वत पर पावन नहीं हो तुआ उस गवन
0: करुणा में दीन बेनती कर नानक तुम्हारी कृपा कर
1: संग सहाय सो आवै न चीत जो बैराई त्यों प्रीत
0: ग्रह पीतर बसै आनंद के माया रंग रसै
1: निरण कर मन मन प्रतीत काल नया बह मूड़े चीत
0: विरोध काम करो झूठ विकार महालोक
1: युगत बिहाने के

दस वस्तु ले पाचै पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजे सद नमस्कार जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अपनी अमान कछ बहुर साहु ले ज्ञानी मन रोस करे जिसकी बस्तिस आगे रखे प्रभु की आज्ञा मन अनेक पात माया के हेत सर पर होवत जान अनेत ज्योति सो चालन हार लपट रहे तह अंध अंधार मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या राजो बंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर कर्त गुमान मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या चरण पर विकार को तावे है मिथ्या मन पर लोभ लुभावे है बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देहे नानक हर हर नाम लये वृथा नाम बिना तन अंध मुख आवत्ता के दुर्गंध गोविंद भजन बिन वृथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंढ लावत अवर उपदेश आप न कर आवत जावत जन मै मर जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उंजन चरण पराता आप है आप करत निबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा जिस पावे तिस लये लड़ लाए थान थनंतर रहे असमाए।

0: अष्टपदी जे प्रसाद छति अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे।
1: जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे।
0: प्रसाद सह सुख मंदिर तिसै ते

0: कधी
1: सात के सम्मुख उजल होत सात संगमल सगली खोत
0: सात के संग मान सात के संग प्रकट सुज्ञान
1: सात के संग बुझे प्रभु नेरा सात संग सब होत नवेरा
0: सात के संग परिणाम रतन सात के संग एक ऊपर जतन
1: सात की महिमा वर्ण कौन पुरानी नानक सात की शोभा ब्रह्मा सम्मानी
0: सात के संग गोचर सात के संग सदा प्रफुल्ल
1: सात के संग आवे बस पंचा सात संग अमृत रस पुंचा
0: सात संग होए सब कीन सात के संग मनोहर बैन
1: सात के संग न कतूं तावै सात संग स्थित मन पावै
0: सात के संग आए ते सिन सात संग नानक सब सुख प्रसन्न

0: नानक साधक संग सफल जन्म
1: साधक
0: संग कलुक तहर साधक संग नरक पर हर
1: संग
0: जो इच्छा सुई

0: सत्संग कर परमेश्वर
1: सात संग लगा प्रभु मीठा साधु का संकट कर दिठा
0: सत्संग प्रयाग्याचारी सत्संग हमारी।

0: ब्रह्म ज्ञानी हुए
1: अष्टपरी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल मह कमल अलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लोक जैसे दूर सरल का शोक
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान
0: ब्रह्म ज्ञानी के चंदन लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक ज्यो पावक का सहज स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल देह मुला जैसे मैं न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास जैसे तरु ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी उचते ऊंचा मन अपने है सबते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभाव करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी तज परा न पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही संधा ब्रह्म ज्ञानी रे तावत बंधा
1: ब्रह्म ज्ञानी क्या हुए सो फला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संतगत उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभ संग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम उधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम प्रवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के सदानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी के हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को पूजे महेश्वर नान ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का काम जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अधे अक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मिट कौन बताने ब्रह्म ज्ञानी की जात ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सा जीव नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का प्रभु प्रभात
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
0: ब्रह्म ज्ञानी शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी।

0: गुर
1: प्रसाद दिखया पर मन की बात न मन दे तरह
0: इंद्री जित पंज दुख ते रहत नानक कोट मदे को वैसा अपरस
1: दर्शनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की मारा क्यों है पिन
0: कर्म कर दो वै नेह कर्म दिस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: पल की नहीं बचे केवल पल कीर्तन
0: संग्रह सिमरन गोपाल सब पुर होत कृपाल
1: आप दृढ़ नाम जपावे नानक ओह वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन ते बिरसा सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म
0: सास बाबा मन खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की दया करा नीत मन तन हर पै बिसन प्रीत
0: हर के तन हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: दो पंडित जो मन प्रबोध

0: कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बर्तन है उदासी,
0: कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपिश्र होते,
1: कई कोट आत्म ध्यानसार हैं, कई कोट कब का विचार हैं,
0: कई कोट नवतन नाम त्यावे, नानक करते का अंत न पावे,
1: कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी,
0: कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभ्यग आत्म निकोर,
1: कई कोट पर दर्प को हिराए, कई कोट पर दुख न करे,
0: कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे,
1: नानक करते की जाना करता रचना,
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंक्ति सर्प पाए, कई कोट पात्र विघ्न
0: जाए, कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट सत्य सूर्य नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र शिक्षत्र,
0: सामग्री अपना सूत तार, नानक जिस भाव तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र,
0: कई कोट किए रत्न संबंध, कई कोट नाना प्रकार जानता,
1: कई कोट किए चिति, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण दिवे,
0: कई कोट जख किनर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सु कर्मर गाच,
1: नानक आप
0: कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म है जीवन है, कई कोट बहुजुनी फिर है,
0: कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे,
1: कई कोट कई

0: दुखन जमते नहीं छोटा
1: संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नर में पाए
0: संत का दुखन मत होए मलिन संत का दुखन सो बाते ही
1: संत कहते को रखे न कोई संत के दुखन कान प्रस्त होए
0: पाल कृपा जी कराए नानक संत संग नंदक पी तरा
1: संत के दुखन ते मुक्त होए संतन के दुखन काग जो लवे
0: संतन का दुखन सर्व जोन पाए संत का दुखन तरगत जोन क्रमाए
1: संतन के दुखन कृष्णा न जाए संत के दुखन सब कुछ
0: संत का दुखन ते सब जाए संत का दुखन नीच नीच आए
1: संत दुखी का खाओ को नाहे नानक संत का वैता वही की
0: महत पाई संत का नंदक खंड टिकन न पाई
1: संत का नंदक महात्यारा संत का नंदक परमेश्वर मारा
0: संत का नंदक राज तीन संत का नंदक दुखियार दीन
1: संत के नंदक को सर्व रोग संत के नंदक को सर्व प्रयोग
0: संत की नंदा दुख में दुख नानक संत पावेता उसका पी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पूरी संत का दुखी किसा का नहीं
0: संत के दुखी को डान लग गए संत के

0: किया जीते टूटा है, संत का दुखी कथा काज न पहुँचा
1: है,
0: संत का दुखी अंतर ते थोता जो सास बिना मृतक की लोता,
1: संत
0: दुखी को वर्ण रखन हार, नानक संत पावे ता लयो बार,
1: मछली तड़पड़ा
0: दुखी भूखा नी राजा है, जो पावे की धनी त्रप है, धर्म ते रह तो संत का दुखी सद मिथ्या कहत, दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मल
1: सजाए,
0: दुखी की कुछ अनासा, संत का दुखी उठ चढ़ा निराशा, नानक जाना सच्चा सोए,
1: सदा सदा
0: करो दिन रात, तुसे ते आवो सास ग्रास।

0: अष्टपदी मानुख की टेक वृथि सब जान देवन को एक है भगवान मार रखे एको आप मानुख के किछ नाही हाथ सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघन न लागे कोए
1: मन में कर निरंकार मेरे सद व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो
1: सब संग
0: चरण चलो मार्ग गोविंद मिटह पाप जपिए हर बिंद
1: हर दरगह नानक उजल मता
0: बड़भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार मत गनी संसार
0: मंथन मुख बोल है हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी
1: एक पुछान तुझ की ओसो जी जाने
0: नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिन्ह निरंजन जानिया
1: जिसकी जानो कृष्णा बुझे
0: राग संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते हो हर जन रहत
1: कीर्तन केवल कोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिया जम की फासा
1: जिस मन भूख नाम भूख
0: जिसको हर प्रभ मंचित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे
1: अपना कृपा करे सो सेवा को किससे डराए
0: जैसा सात ऐसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया
1: गुरु प्रसाद सब बुझिया
0: जब देखूं तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब
1: श्रेष्ठ
0: अविनाशी न ही किश खंड धारण तार रहे हो ब्रह्मांड
1: प्रताप नानक जाको
0: जिन प्रभ जाता सो शोभावन सगल संसार उधर तिन मंत्र
1: सगल उदाहरण प्रभु कैसे लोग दुख विसारण
0: अबे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल
1: उनकी सेवा कोई लागे कृपा करे बड़ पाके
0: नाम जपत पाव है विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर्मान
1: जो कुछ करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग
0: सह सुभाए होवे सो होए करण हार पछाणे सोए
1: लगाना जैसा सा तैसा निष्ठाना
0: जिते उपजे तिस माहे समाये ओए सुख निदान उन्हूं

0: निमित गत
1: न बुझ करत विचार
0: कीमत न जाना की गया नानक ज्योत भाव है सो वर्ती गया रंग राजन रहे मुरख वचन पदार्थ रहे
1: संसार
0: सेवक सो वट भागी जन

0: अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत वेखन हार नाम सत सत ध्यान हार
0: आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी बुझन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए जहाँ कह हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया बस्त महले बस्त गटाई ताको भिन्न न कह न जाई ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर को सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम कह रंग सो सेवक जिस दया प्रभु धार नानक सो सेवक सास सास समार
1: अपने जन का पर्दा ढाक है अपने सेवक की सरपर रख है
0: अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आफत रख है ताकि अस्मित को न रख है
0: प्रभु के सेवक को न पहुँचे प्रभु के सेवक ऊंच ते ऊंचे
1: अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक जय विस्पत काया
0: नीकी कीरी मह कल रख है पसम कर लश्कर कोट लाख है मानस जतन करत बहु पांत तिसके कर्तव्य बिरथे जात काहे सोच कर हरे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी नाम रतंजन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नाम है नाम समाने बोलो जस जे बा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात जो हुआ हो सो जान प्रभ अपने का हुक्म पछान
1: जानो
0: आठ पहर प्रभ सह हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे
1: जिन
0: जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता
1: दर्श
0: अवश्य अनप सगली छाड़ तिस जन की

0: पार ब्रह्म एक है आप नहीं कस पार
1: जन बुलाया न जाइए नानक ऐसा गुर बटभागी
0: पाई है
1: राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे
0: सुनकर वचन कर्म आगाम
1: गुर रखे जाका मंत्र अमृत दृष्ट पे कह हुए शांत
0: गुण नहीं पाए नानक जिस पावे।

0: संत नाम करो विचार एक सिमर नाम याद
1: आहारोप
0: सम्रत दृढ़ कर गौ नाम हर बथ
1: राखो
0: मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे कौनित बच्चा मीत सो सुख साधु संग परीत
1: करनी
0: रोग न जाए रोग मिटे हरे अब खुद लाए
1: निदान
0: मन पर बुद्धो हर कर नाये दिस्तावत आवठाए ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: पूर्ण संपर्गास
0: जय बसा अवनाशी कौ नान काटी जम फासी
1: विचार कह जन साचा जन्म मरे सो का चोकाचा
0: गौन मटे प्रभु सेव आप त्याग पह आप त्याग शरण गुरुदेव
1: रतन जन्म का होए उदार हर हर सिमर प्राण आधार
0: पावना छूट न हारे सिमर सासत भेद बिचारे
1: भगत करो मन लाए मन मन सत नानक फल पाए
0: सपना चाल तेरा तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना
1: कुटुंब अर बनिता इनते कहो तुम कौन सनाता
0: नुआया विस्तार इनते कहो कौन छुटकार
1: असर तीरथ रसवारी टूटा डंप झूठ पासारी
0: ये दिस बुझाना बिगाना नाम विसार नानक पछताना
1: की मासूम रहे जाने भगत बिना को डूबे जाने
0: भगत करो मन मीत निर्मल

0: जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देव हो हर नाम
1: साधना की मांगो सूर बाल ब्रह्म श्रद्धा पूर
0: सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें ते आवो
1: श्री भगत करो प्रभु की नित नीत
0: एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार
1: महासुख होए हर स्वावे दुर्गा कोए
0: चाख्या से जन तृप्ता ने पूरन पुरख नहीं डोला ने
1: ऊपर परे प्रेम रस रंग उपजय चाओ साधु के संग
0: परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवला
1: बड़ भागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई
1: धन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल
0: बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया
1: सुनी जरदा स पूरी रव रया स संग हजूरी
0: जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये
1: सुख मिसरे कामना भन सुख मिसरे जे किया जाने
0: सो क्यों बिसर जिन सब किस दिया सो क्यों बिसर जे जीवन जिया
1: सो क्यों बिसर जे अपना गुरु प्रसाद को बिरला लाखे
0: सो क्यों बिसर जे बिकते काट जन्म जन्म का टूटा गंड है
1: और पूरे सत्य बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया
0: साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो आग जपो अमरा नाम जपावो
0: भगत पाए तरी है संसार बिन भक्ति तन हो सी चार
1: सुख नाम बूढ़न जा पाए विश्राम
0: सकल दुख का हो वतनास नानक नाम जप हो गुणतास
1: प्रेम रचाओ मन तन अंतरी सुआओ
0: नेत्र हूँ पेख दर्श सुख होए मन बिगसह साध चरण तोए एक वस्त दी जय कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया सब बख्शंद दीन दयाल भगत वत्सल सदा कृपाल
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर प्रतपाल
0: आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
1: मुगत मोह पाए हर के गुण गाए
0: अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई
1: ओ भोजन का पुर संगीत रचना जपती हर हर नीत
0: अली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमत

0: अपने चलित आप करना हार नानक ठाकुर अगम अपार
1: नासी सुख अपने आसन ते जन्म मरण कहो कहा विनाशन
0: जब पूरन करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए
1: जब अवगत गोचर प्रभु एका तब चितर गुपत किस पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन पिछे कौन बंधन बांधे
1: अपने आप ही चर्जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा
0: यह निर्मल पुरुख पुरुख पत होता तह बिन नर कहो क्या होता
1: निरंजन का निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान
0: जय स्वरूप केवल जगदी।

0: बृहस्पति
1: आप पथाव सुन हारे अपेक आप विस्तार
0: जाए अपना सुने दई समाये
1: नहीं कि छोए अपन सो सब जगत परोए
0: जाको प्रभु जीव आप जाए सच नाम सोई जन पाए
1: समी तत्का बीता नानक सगल सिठ का जीता
0: जी जंत्र सब का दीन दयाल अनाथ को नाथ
1: राखे तिस्तु न मारा सोमुआ जिस मन हम विसारा

0: अपने कर्तव जान आप अंतर जामी रहो गे आप जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए
1: अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक कित जान्या
0: जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरथी जाए
1: बोसे भाव ने आई हुकम बूझ परम पद पाई
0: इसके ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार
1: और पै निर्वैर अंदन पूजे गुरु के पैर
0: लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आप

0: राम नाम अंतर वरतार
1: पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिसन बसत साच परिखिया
0: मंत्र नाम जप हो जाए दुख दर्द मन ते पहु जाए
1: व्यापार करो व्यापारी दरगहन बह के तुम्हारी
0: एक रखो मन माहे नानक बहर न आवह जाए
1: ते दूर कहाँ को जाए उबर राखन हार ते आए
0: निर्भो जप सगल को मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे
1: राख तिस नाही दुख ना

0: अंतर प्रभ दीठा नाम प्रभु का लागा मीठा नौ निज अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका विश्राम तिन देखा जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए धरन महे आकाश पयाल सर्व लोक पूरन प्रतपाल पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिसे समाहे
1: सुख पाओ
0: वेद पुराण सिमरत मह देख ससियर सूर नक्षत्र मह एक
1: प्रभु की सबको बोला
0: सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइय गुण है अमोल
1: स्वामी
0: गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मह एहो विश्वास संत जना सुन शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जो जो होए सोई सुख मान करन करावन हार प्रभ जान आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत अनेक कला लखी नह जाए जिस पावे तिस लय मिलाए
1: दूर आपे आपे आप
0: अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना
1: बनाया
0: सबके मध अलिप्तो रह।

0: आप साच धारी सब साच ओत पोत आपन संग राच
1: न जाए दूसर होए सा सो जी पाए
0: तिसका किया सब परवान गुरु प्रसाद नानक एहो जान
1: जो जानत सदा सुख होए आप मिलाए लए प्रभु सोए
0: ओह धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
1: धन धन जन आया जिस प्रसाद जगत राया
0: जन आवन का यह सुआओ जन का संग

कोई ना जाने तुमरा ऊचे ते सगल समग्री तुमरे सूतर तुमते हो सो तुमरे गत मित तुम्हें नानक दास सदा कुर्बानी पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस जिथे शब्द बजाए तेग बहादुर सिमरया करण उन दयावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहबजादियां चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तना प्यारिया सच्चारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहब बोलो जी जिन्हां सिंघां सिकणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़िया ते चढ़े आ रहे ने चराए गुरुद्वारा की सेवा ने कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी के सार स्वस संगण भाई तिना की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी साहब बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारा का ध्यान धरके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहत हर शरिया देखते फतेह बिरद की पैज पांतक जी श्री साहब जी साहे खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदार नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशना चुपकियां चंडे बुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत कारा का आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय तार जियो श्री ननकाणा साहब ते होर गुरुद्वारिया गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़े अगे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो इन माणियो के मान नताणियो के तान ल्यूटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ओ दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावे ता आने रास महाराज जी आप जी दे चरणा अरदास बेनती आप जी की महान बख्शिश हुई पावन हजूरी अंदर रात्रि दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच आरती शब्द कीर्तन चल रही लड़ी वार गुरु शब्द दियां विचारां उपरंत महाराज जी तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो धन धन साहब श्री गुरु अर्जुन साहब महाराज जीओ आप जी की शहीदी नूं समर्पित सिख गुरद्वारा सिनहो जी दियां समूह संगतां वल्लों अज रात्रि दे दीवाना दे विच महाराज जी संगती रूप च सुखमणि साहब जी दे जाप कीते गए कृपा करनी महाराज जी बाणी पढ़द्यां कीर्तन करद्यां विचारां करद्यां सुखमणि साहब जी दे जाप करद्यां होइयां बेअंत बेअंत फुल्लां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल तों बख्शिश करना बाणी दा पावन संगतां दे हिरदयां तों वसाउणा ਅਜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਿਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਅੰਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵ ਭਾਈ ਐਂਡੀ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ $500 ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਉਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਸਿੰਘ ਦੇ 15ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ
$25 माया भेटा खरदन कृपा करनी सेव प्रवान की भेटा दर प्रवान करनी बच्चे चढ़ती कला बख्शिश करनी जियो भाई विक्रम सिंह खालसा समूह परिवार की सेहत तंदुरुस्ती चढ़ती कला की अरदास बेनती करद गुरु घर वास्ते $450 माया भेटा कर देने कृपा करनी सेव परिवार की भेटा दर प्रवान करने परिवार को देर रोता तंदुरुस्तियां प्रदान करनी बीबी मनदीप कौर वाहगुरु जी का शुकराना करद कड़ा प्रसाद वास्ते $101 माया भेटा कर देने कृपा करनी सेव परिवार की भेटा दर प्रवान करनी परिवार की अश्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनी बच्ची अमीरा कौर के जन्म की खुशी में परिवार वालों धन्यवाद करद अरदास बेनती करद कृपा करनी बच्ची के सिर से मेर प्रत रखना लंबी आयु विद्या के दान अमृत दुनिया दाता बख्श के निहाल करना चढ़ती कला बख्शिश करनी कृपा करो महाराज जी सिख पंथ में एकता प्रेम भावना की दात बख्शिश करनी जी खालसा पंथ नूं चढ़ती कला बख्शिश करनी जी इस वेले दीवाना की संपूर्णता होई पावन पवित्र हुक्मनामा बख्श के सारिया संगतां नूं निहाल करो जी से गुरमुख प्यारे मिलना जिन्हां मिलिया आप जी का नाम चेता आवे नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ

सर तरावै प्रभ भावै बिन स्वास तिराख है प्रभ भावै था हर गुण पाख है प्रभ भावै था पतत उधारे आप करें आपन विचार है दोह सरिया का आप स्वामी खेला बिकसै अंतर जामी जो भावै सोकार करावै नानक दृष्टि आवर न आवै कहो मनुख ते क्या होए आवै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ होए ता सब किशले जो तिस भावै सोई करे अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै भरमे भूला दै दसतावै निमुख माहे चार कूंट फिर आवै कर कृपा जिसे अपने भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै जा कहो अपने करै बख्शीस ताका लेखा ना गनै जगदीस जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूरण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई फुन थियो कबहू ऊच नीच मैं बसै कबहू सोग हर करंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू नृत करे बहु भांत कबहू सोई रहै दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्ब की हो तरवाल कबहू होए बहै बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू आप कीरत मैं आवै कबहू भला भला कहावै ज्यों प्रभ राखै तिवही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावै ध्यान कबहू ताट तीरथ इसनान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक ज्यों भरम है परमिया नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै ज्यो तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोए कबहू साध संगत एहो पावै उस अस्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस अस्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते इक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए बिसराम नानक प्रभ कै सद कुरबान सलोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपति जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने मैं जीवन वंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को कर्म वंत कहावै जन्म मरै बहु जोन परमावै धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आगै सुख पावै धनवंता होए कर गर्भावै तृण समान काश संग न जावै बहु लस्कर मान को ऊपर करे आस फल पीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगै परवान कोट कर्म करे हों तारे श्रम पावै सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरक फिर अवतार अनिक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्ब की रीन जाका मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझते काश होए तब इस को सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तहरै को बैरी मीत तब लग नि चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुरु प्रसाद नानक हों छूटै सह सुख हटे लख को उठतावै त्रिपत न आवै माया पाछै पावै अनिक भोग बिख्या के करै नह त्रिपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहां बिचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो केश की नो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूँ कै संग बूझै देखै करै बबेक आपे एक आपे अनेक मरै न बिन सै आवै न जाए नानक सद ही रया समाए।
आप उपदेशै समझै आपु, आपे रचिया सबके साथ। आप कीनो आपन बिसथार, सब काश उसका उकरने हार। उसते भिन्न कहो किश होए, थान तनंत्र एक सोए। आपो नहीं चले तो आप करने हार, कौतक करे रंग अपार। मन अप मन मह आप, मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी। सच सच सच सब कीना, कूट मधे किने बिरला चीना। भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बखयाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। सलोक संत सरण जो जन परै, सो जन उदरण हार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक मै पाए। संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा तेहीन। संत के हते को रखे न कोए, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरै। संत कै दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काव ज्यों लवै। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन के रिमाए। संतन कै दुखन तृष्णा मै जलै, संत कै दुखन सब को छलाए। संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए। संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे ता ओए भी गत पाहे। संत का निंदक महातताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया रदीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दुख मैं दुख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित्र। संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी। संत का दुखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै। संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत पावे ता लय मिलाए। संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कतै काज न पहुँचै। संत के दुखी काओ उद्यान प्रमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै। संत का दुखी अंतर ते थो था, ज्यों सास बिना मृत कीलो था। संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीज आपे ही खाहे। संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे तन लय उबार। संत का दुखी एवं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पावक ईधन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटै केला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। कीरत निंदक का तुर ही पाया, नानक ज्योत सुभावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरै ना जीवाइए। संत के दुखी की पूजै ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत कै दुख न त्रिशकै कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया किरत न मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोए। सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करहु दिन रात, तिसे त्यावहु सास गिरास। सब काश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेर आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनों कृपा करै तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से सलोक। तजो सियानप सुरजनौ सिमरौ हर हर राय, एक आस हर मन रखौ नानक दुख परम पहु जाए। अष्टपदी मानुख की टेक वृथि सब जान, देवन को एकै भगवान। जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागै आए। मारे रखै एको आप, मानुख कै किश नाही हाथ। तिसका हुकुम बूझ सिख सुख होए, तिसका हुक्म बूझ सुख होए। तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए। नानक बिघन न लागै कोए,
उस तत मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला, कर लेह जियो नैनो पेक ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म सरवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बटभागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर की गुण गाए, राम नाम जो करे विचार, सिर तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, एतो तकियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते उहार जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस न लागै दुख, जिस कौ हार प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहिला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस की डराय, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोधत सोधत सोधत सीजिया, गुरु प्रसाद तत सब बूजिया, जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल, नह किश जनमै नह किश मरै, आपन चले तो आप ही करै, आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मह आप, अनक जुगत रच थाप उथाप, अविनाशी नाही किश खंड, धारण तार रहो ब्रह्मांड, अलख अभिव पुरख प्रताप, आप जपाए नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सो बावंत, सगल संसार उदरे तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख बिसारण, आपे मेल लय कृपाल, गुरु का शब्द जाप पय निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करै बड़ पागै, नाम जपत पावै बिसराम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान, जो केश करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाए होवै सो होए, करणे हार पछाणै सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माहे समाए, वे सुख निधान उन्हों बन आए, आपस को आप दिनो मान, नानक प्रभ जन एको जान, सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार, जाकै सिमरन उधरिया, नानक तिस बलहार, अष्टपदी टूटी गंडन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप, आपन किया कशु ना होए, जे सौ प्राणी लोचै कोए, तिस बिन नाही तेरा किश काम, गत नानक जाप एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोहै, प्रभ की जोत सगल घट सोहै, धनवंता होए क्या को गर्ब है, जा सब किश तिसका दिया दरब है, अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहता वै, जे को होए बहे दातार, तिस दिन हर जाने गवार, जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग, नानक सो जान सदा आरोग, ज्यो मंत्र को थम है थमन, त्यों गुर का शब्द मन है अस थमन, ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लागत निस तरै, ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास, ज्यो महाउद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावै, तेन संतन की बाछौ तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिल लाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइय, दुख सुख प्रभ दे बनहार, अवर त्याग तू तिसै चितार, जो काश करै सोई सुख मान, भूला काहे फिरे अजान, कौन बस्त आई तेरे संग, लापट रहो रास लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माहे, नानक पात से ती घर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, ताज अभिमान लेहो मन मूल, राम नाम हृदय में तोल, लाद के पसंत है संग चाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल,
ਧਨ ਧਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ ਏਹੋ ਵਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਪਾਰ ਨਾਨਕ ਥਾਕੈ ਸਾਧ ਬਲਹਾਰੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਤੁਹੇ ਪੀਓ ਅਰਥ ਸਾਧ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸਨਾਨ ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾ ਲਨਹਾਰ ਭੁਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਏ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ ਜਾਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤੇ ਹੋਲੋਏ ਜਾਕੈ ਹਿਰਦਾ ਏਕੋ ਹੋਏ ਸੱਚ ਕਰਣੀ ਸੱਚ ਤਾਕੀ ਰਹਿਤ ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ ਸਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕੇਸ਼ ਤ੍ਰੇਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਭਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ ਤਿਸਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਕੋਇ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਆਪੇ ਬਿਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸੰਦ ਸਾਧ ਤੇ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਉ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨ ਰਾਉ ਮਨ ਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਖਾ ਨੇਤਰ ਹੋਰ ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਕੈ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਪਾਕੈ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤ ਹੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੇ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਨ ਜਨ ਦੇ ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆ ਵਹਿਸੇ ਤਿਹੋ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਪੇਕ ਕਰੈ ਇਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਬਿਰਧ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅਭਿਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੁਨ ਸਰਵਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਨੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪਰਧਾਨ ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਕਰਣੇ ਹਾਰ ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ਬਿਸ ਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਘਟਣ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ
जन का सेवक सो वड पागी, जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। श्लोक आद सच जुगाद सचो है पिह सचो, नानक होसी पिह सचो। अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार। आप सत सत सब तारी, आपे गुण आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभ बखता, सुरत सत सत जस सुनता। बुजनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत सरूप हृदय जिन मान्या, करण करावन तिन मूल पछान्या। जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। भय ते निरपौ होए बसाना, जिस ते उपजया तिस माहे समाना। बस्त माही ले बस्त गडाई, ताको भिन न कहना जाए। बूझै बूझन हार बबेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवकी निर्मल रीत। ठाकुर कौ सेवक जन संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग। सेवक कौ प्रभ पालन हारा, सेवकी रखै निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सास सास समारै। अपने जन का परदा ठाक है, अपने सेवकी सर पर रख है। अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवकी आप पात रख है, ताकि गत मित कोय न लख है। प्रभ के सेवक कौ को न पहुचै है, प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे। जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैदिस प्रगटाया। निकी कीरी मैं काल राखै, भासम करै लस्कर कोट लाखै। जिसका सास न कढ़त आप, ताको राखत देकर हाथ। मानस जतन करत बहु भांत, मानस जतन करत बहु भांत। तिसके करतो बिरथे जात, मारे न राखे अवर न कोय। सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच कर हेरे प्राणी। जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपी है, पी अमृत एहु मन तन तृपी है। नाम रतन जिन गुरुमुख पाया, तिस किश अवर नाही दृष्ट आया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग। नाम रस जो जन त्रिपताने, मन तन नामे नाम सुमाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै साध काम। बोलो जस जिह बा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात। करै भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने सिउ रह समाए। जो हुआ होवत सो जानै, प्रभ अपने का हुक्म पछानै। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो। आठ पहर प्रभ बसा है हजूरे, कहो नानक सही जन पूरे। मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिन जान। देख जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जान सर्ब थोक का दाता। तिस की सरन सर्ब सुख पावै, तिस कै दर्श पाप सब पाप मिटावै। अवर सियानप सगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जाना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। सलोक सात पुरख जिन जानिया, सतगुर किसका नाओ। तिस कै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै। सतगुर सिख कौ नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी हे। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सात गुर सिख कौ जी नाल सुमारै। गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सहै। आपस कौ कर काश ना जनावै, हर हर नाम हृदय सत तिहावै। मन बेचै सतगुर के पास, ते सेवक के रा कार्य रास। सेवा करत हुए नेह कामे, तिस कौ होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिसवे गुर का मन मन है, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै।
सो सत गुर जिस हृदय हर नाउ अनक बार गुर को बल जाओ सर्ब निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक है आप नहीं कश भरम सह सियाण पलया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गात निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुन कर बचन करन आघाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखा हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावै तिस लय मिलाए जेबा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण बबेक काहू बोल न पहुचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमर है सद बलहारी सत गुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जा कै मन प्रगटे गुण तासो आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग न लेप मन मह राखै हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तहते नासे तपत माहे ठांड वरताई आनंद पाया दुख नाठे पहाई जन मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे भाव चुका निरपाव होए बसे सगल ब्याद मनते खै नसे जिस का सा तिन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चुके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चिरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोई सर्ब निरंतर एक सोय कोत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चल बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नानके हो धन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत बिसार हो चरण कमल रिदमै उरतहारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहु नाम हर वथ इहो तन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखु मन माहे सर्ब रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंत उठ तावै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाछै बी मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सोभा को करै भली करनी सा सोभा भज हर की सरनी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटै हर अवखद लाए सर्ब निधान मैं हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन प्रभु तो हर कै नाए दय दिस धावत आवै ठाए ताको बिघन न लागै कोई जाकै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाउ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित घर जाए बसै अबे नासी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवा गवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यों रत्न जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनको पावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए सांगन चालस तेरा तना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अर बनता इनते कहो तुम कवन सना था राज रंग माया बिसथार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे नाम बिगाना नाम बिसार नानक पशुताना गुर की मत तुह ले आने भगत बिना बो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावहो सुनत कहत रहत गत पावहो सार भूत सत हर को नाउ सहज सुभाए नानक गुण गाओ
गुणगावत तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हमें बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल। षाढ़ सियाणप सगली मना साध संग पावै सच तहना, हर पूंजी सांच करहु व्यवहार, इहां सुख दरगा जयकार, सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख। एको जप एको साला, एक सिमर एको मन आहि, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहे ओ प्रभ आप। अनक विसथार एक ते भए, एक आराध प्राशत गए, मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता सलोक। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ सरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभ दान, कर कृपा देवो हर नाम, साध जना की मंगो धूर पार, ब्रह्म मेरी सरता पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो। चरण कमल सिउ लागै प्रीत, भगत करौ प्रभ की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगै नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावै बिरला कोए, जिन चाखिया से जन त्रिप ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुपार परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग, परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अन दिन लिव लाग। बड़भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पही, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुकत जन पया, जनम मरण दुख भ्रम गया, ऐश पुनी सरदा सब पूरी, रव रहया साध संग हजूरी, जिसका सा तिन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिख ते काटै, जन्म जन्म का टूटा गंढै, गुर पूरै तत इह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपहो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावहो, आप जपहो अवरह नाम जपावहो। भगत पाए तरिया संसार, बिन भगती तन होसी शार, सर्ब कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नासु, नानक नाम जपो गुण तासु, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एही सुआओ। नेत्रहो पेख दर्श सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए, भगत जना के मन तन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस्त दीजै कर माया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कहीं न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बखसंद दीन दयाल, भगत वशल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरुख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपाए सो होए पुनीत, भगत पाए लावै मन हीत। हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनेक राज भोग बड़े आई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सो करनी शोभा धनवंत, हिरदय बसै पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सारगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब आकार एहो कछ ना दृष्टिता, पाप पुन तब कहते होता, जब धारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस संग कुमात, जब इसका वर्ण चिहन ना जापत, तब हरक सोग कहो किसै व्यापत,
जब आपन आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत भरम आपन खेल आप वरती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सेव साकत कहो के तठाए जब आप ही आप अपनी ज्योत धर रहे तब कवन निडर कवन कत डरे आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अभिनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त केस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शेदर लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कवन त्रिपतावै करण करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई जय सर्व कला पे प्रवीण तह वेद कतेब कह को चीन जब अपन आप उरत हरै तौ सगन अप सगन कहा विचार जह अपन ऊच अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिय चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जन हो आप जह अशल अशेद अभेद समाया ऊहा किसै व्यापत माया आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही परवेश जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह अपन आप पतियारा तह कौन कथै कौन सुनने हारा बहु पे अंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा जह आप रचियो प्रपंच आकार तेहो गुण मैं कीनो बिसथार पाप पुन तय पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पह पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बख्यान आपन खेल आप कर देख खेल संकुच तव नानक एक जह अवगत भगत तह आप जह पसरे पसार संत प्रताप दोहू पाख का आपे तनी उनकी शोभा उनहू बनी आपे कौतुक करे आनंद चोज आपे रस भोगन निरजोग जिस भावै तिस आपन ना लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेसुमार अथा अगंत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वरतन हार ए नानक एक पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथ आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जात सुभावै तां सिष्ट उपाय आपने भाणे लय सुमाए तुम ते पिन नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जा को प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समंदर सी तत का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो विसार है तिस ताज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहे व्याप प्रत पालै जीअन बहु भांत जो जो रचियो सो तिसै त्यात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आस में बिरथी जाए सेवक को सेवा बनाई हुकम बूझ परम पद पाई इस ते उपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर भय निरवैर आन दिन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखिए परलोक सुहिले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करहु आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार
अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का एह सुआओ। आठ पहर प्रभ पेखू नीरा, मिटे अज्ञान बिनसय अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावहो, मन इच्छे नानक फल पावहो। हलत पलत दोए लिहु सवार, राम नाम अंतर उर तार। पूरे गुर की पूरी देखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया। मन तन नाम जप हो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए। सच वापार करो हो वापारी, दरगह निभाए खेप तुम्हारी। एक काटे करखु मन माहे, नानक बाहुर ना आवै जाहे। तिस ते दूर कहाँ को जाए, उभो राय राखन हार ते आए। निरपहु जपै सगल पहु मिटै, प्रभ की कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन कौ कोई न पौचन हार। सर ऊपर ठाडा गोर सूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान, अंतर जमी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सहो तिनिहाल, ताकै निकट न आवत काल। अमर पै अमरा पद पाया, साध संग नानक हर तिहया श्लोक। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगासु। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समगरी एकस कट माहे, अनेक रंग नाना दृष्टाए। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट ब्याप रहया भगवंत। तरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पाणी बैसंतर माहे, चार कुंट दह जिसे समाहे। तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससि अर सूर नखियत्र मैं एक। बाणी प्रभ की सबको बोलै, आप अडोल न कब हूं डोलै। सर्ब कलाकार खेलै खेल, मोल ना पाइय गुण अमोल। सर्ब ज्योत मैं जाकी ज्योत, धार रहो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं इहो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावे ता करे विस्थार, तिस भावे ता एकंकार। अनिक कला लखी नह जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप आप भरपूर। अंतर्गत जिसे आप जनाए, नानक तिस जने आप बुझाए। सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखन हारा। सगल समगरी जाका तना, आपन जास आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सब कै मद अलिप तो रहे, जो किश कहना सो आपे कहै। आग्या आवै आग्या जाए, नानक जा पावै तां लए समाए। इस ते होए सुनाही बुरा, ओरै कहो किने काश करा। आप भला करतूत आत नीकी, आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संग राच। ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए तां सो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान। जो जानै तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन
ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆ ਗੌਤਰੰਗ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰਹੋ ਹਰ ਤਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਹੋ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਖੇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਧਾਰੋ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ ਚਿਤ ਚਿਤ ਵਹੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕੈ ਨਿਸਤਾਰ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾ ਕਾ ਹਰ ਰੰਗ ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੈ ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ਸਰਨ ਜੋਗ ਸੁਨ ਸਰਨੀ ਆਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਪਏ ਸਭ ਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈਨ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਪਏ ਗੁਰਦੇਵ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰਹੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰਚੀਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋਹਤ ਨਿਧਾਨ ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਵਨ ਜਾਨ ਹਰ ਤਨ ਖਾਟ ਚਲੈ ਜਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਖੇਮ ਸਾਂਤ ਰਿਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਹ ਸਿੱਧ ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਤਮ ਇਸਨਾਨ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਭ ਕੈ ਮਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਪਹਨੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮੈਂ ਤਾਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਬਖਾਣੀ ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ ਤੂੰ ਲੱਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

कहो मैं कह न कोई। गावे को ताण हुवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करि तन खेहे, गावे को जी लै फिर देहे। गावे को चापै दिसे दूर, गावे को विखै हादरा हदूर। कथ ना कथि न आवै तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट। दे दा दे लै दे थक पाए, जुगा जुगंतर काही काए। हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक विकसै वे प्रवाहु। साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाउ अपार। आखै मंगै देह दे, दात करे दातार। फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार। मुहाओ के बोलन बोलियै, जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार, नानके वै जानियै सभा पे सचियार। थापिया ना जाए कीता ना हुए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावियै गुणी निदान। गावियै सुनियै मन रखियै भाउ, दुख पर हर सुख कर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहा समाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। जे हौ जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, तीरथ नावा जे तिस पावा। बिन पाने के नाए करी, जे ती सिर ठोपाई वेखा। बिन कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर माणिक। जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे यार जा उर्द सुनी होए, नवा खंडा विच जानी है। नाल चले सब कोए, चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवई, ता वात न पुछे के। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई, जे तिस गुण कोए करे। सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनै धरत धवल आकाश। सुनै दीप लो पाताल, सुनै कोई न सकै काल। नानक भगता सदा विगा, सुनै दुख पाप का ना। सुनै ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनै मुख साला हनुमंद। सुनै जोग जुगत तन भेद, सुनै शास्त्र सिमृत वेद। नानक भगता सदा विगा, सुनै दुख पाप का ना। सुनै सत्संतोख ज्ञान, सुनै अठसठ का स्नान। सुनै पढ़ पढ़ पावै मान, सुनया लागै सहज ध्यान। नानक भगत सदा विगा, सुनया दुख पाप का नाश।

नदियां तैवाह पवह सुमुंद न जानी है सुमुंद सह सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुलना हुबनी जे तिस मनो न विसरह।

चार जोर न जुगती छुट्टै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवार नदरी करम पवै निशान कच पकाए उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पवन पाणी वैसंतर केते काण महेश केते बरमे घाट घड़ी रूप रंग के वेश केतियां कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध ना

तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे नाव हिमरे न ठाके जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसह के लोक रह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै कांड मंडल वर भंड जी को कथै तंत अनंत।

हैं, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनीन है, अनाद है, अजेय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है।

देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौने अनंगी अनाते नरसंगी प्रमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ती विभूते कलंकंग विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जुगे सुंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोघी अपुगते नमो जुग जुगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रे देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानं सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता अदो उर्द अर्धं अगंग ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदी अपेदी अनामंग कामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रया छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निदाने नमस्त्वंग निर्णाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृत सिद्धं निवासी चरपट चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म लख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता

उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कूपन काल जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नरेक आद पुरुष उदार मूरत अजौ नाद अशेक देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हुई फैल्यो अनुराग नाम काम हीन पेख ता मुह न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदै मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जान नहीं जे वेद और कतेब रूप रंग न जात पासो जानी के जेब तात्मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरति लोक चौदह के बिकै जग जा पी जय जाप आ देवनाद मूर्था प्यो सबै जेता परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहता भूतला कपेश अंगराग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजनाद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेक सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नीत भागत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवही वह चित माद पार छंत प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्तिन अनाश।

अनकाल अनपूत अंग आभा अपांग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अतदुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्यत कर्म आदृश्य धर्म सर्व

चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाली चतुर चक्र काली चतुर चक्र पासी चतुर चक्र वासी चतुर चक्र माने चतुर चक्र दानी चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य कृश्य भगवती छन्त्व प्रसाद कथते किया चिज देशय किया भिज पेशय किया गंज कर्म है किया भंज भरमय किया भिज लुकै किया दित सुकै कि अवतूत वर्ण है के विभूत करण है के राजिंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के असुख वर्ण है के सर्वा अपर्ण है के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के वर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आदि अदिव है के आपु अपिव है के चित्रंग बहीन है के कह अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक व्यव के गय भूल गय कि अफूल गुना है कि साहन सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी ध्यानद है कि राजक रहीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पिश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पिश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलि मैं के परमं फही मैं के आकल अला मैं के साहिब कला मैं के हुसनल वजू है तमामुल रुजू है हमेशल सलाम है सलीखत मुदा मैं घनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम मै रुजुवन निदान है हरीफुल अजीम मै रजा एक यकीन है अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल किराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्वाद स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी त्रिवर्गंग त्रिवादे अगंजी अगाधे सुभंग सर्भागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवंग सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छन्त्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल छन्त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्वाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं शरीक मितु अमीक सदैव प्रभा अजय है अजाह भगवती छन्त्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुस्नल चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुस्नल जमाल है गनीमुल की राज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है
कलंकं परनाश है, समस्तुल निवास है, अगंजिल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है, के नरकं परनाश है, बहस्तुल निवास है, कि सर्वल गवन है, हमेशुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परमीश है, समस्तुल अधीश है, आदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेक है, जमीनुल जमा है, अमी कुल इमा है, करीमुल कमाल है, कि जुरत जमाल है, कि अचलंग प्रकाश है, कि मितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है, कि अमितो विभूत है, कि मितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि मितो अपंग है, मद पार छंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभवनाश मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल तल मुदाम अंचिज अंग आसन अपंग उपमा पार गतमित उदार जल थल अमंड दिस्विज अपंड जल थल महंत दिस्विज बेअंत अनुभवनास त्रितर तुरास आजान बाहु इक सदाहु ओंकाराद कथनी अनाद कलखंड के आल गुरुवर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंचिज गात आजिज न बात अंचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अंडठ अपार आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर हैं करुणा करें अजपा जप है अथपा तप है अकृता कृत्य अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी कृत है मितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नरनायक है खलकायक है विश्वंपर है करुणालय है नृप नायक है सर्पायक है पवभंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है पुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंतकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंतां संशांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विपूते अलंकार रूपे अलंकार लंके नमो वास आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम गह अटाह नाथे प्रमाते अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल प्रणामी समस्तुल प्रणासी अगंजुल नामी समस्तुल निवासी निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजाय गनी में हरियं करियं करिमुल रहीम में चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुपंग

के सूर सुरार्दन सुद सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा ते एक रति बिन एक रति के मातिम तंग जरे जर संग अनूपो तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी भजान के भूप भली बिदन आवत शीस न जात बिचारे ते भय तो कहा भय भूप तंत को नांगे पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गचान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के बिख है पावन आहार जति जतार सब सुबिचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दबाह सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरूर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार विचार सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मुवासन मातिक जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हासो बातन ही चगचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचिकन एक सो एक दिवैया दानव देव फनिंद निशाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बो पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र जिंद्र निराध जौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सतीपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग फिर जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग ते नर फिर न देह करेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ ग्रियोली सा समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बख्यान सो बैठ के ऐसी ऐसी सुबह सितायो साच कहूँ सुन लिहु सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मैं काहू पछा को शीस निवायो को बतान को पूजत है पसको मृतान को पूजन तायो

आई दुष्ट दुख तेले हो बचाई। कृपा करी हम पर जगन्माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्रता। किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दुख इनको क्षय करता। श्री आशुतो जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाला। मन बाचत फल पावै सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़ेल सुने गुंग जो याही, सुरस न पावई। सुने मूड चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर की रह। हो जो या की एक बार, चौपाई को कह चौपाई। संबत सत्र है सहसपनी, जय अर सह सुन तीन कही। जय भाद्र सुदिष्टमी रवारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। सुवैया पाई गही जब ते तुमरे, तब ते कुआंक तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहमत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबैबो भेद, कयाम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी, कर मैं न कहो सब तुहे बखान्यो। दोहरा

मनोभावना संपूर्ण करनिया संगतां वल्लों गुरु के लंगरां वास्ते बेअंत रस्तां बस्तां भेटा कीतियां गईयां। गुरु के लंगरां विच तन मन धन दे नाल सेवावां कमाईयां जा रहीयां। सभना दियां हाजरियां सेवावां दर प्रवान करनिया चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजनिया रहमता करनिया। सतगुरु जी इसे तरह आप जी ने कृपा करनी समूह सिख पंथ दे उत्ते चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना अपने दिहाड़े गुरपुरबां नूं मनाउण दे लई श्रद्धा भावना अते उत्साह बख्शिश करना रहमता करनिया। सतगुरु जी आप जिया वल्लों बख्शिश कीते हुए सिखी सिद्धांत नूं कमाउण दी आप जी ने बल उद्दम बख्शिश करके नवाजना। गरीब नवाज इस वक्त दीवाना नूं मुख रख संपूर्णता नूं मुख रखदे आप जी के हजूर कड़ा प्रसादी देख हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते कृपा करो पावन पवित्र श्री मुखवाक बख्शिश करो हुक्म ते चलन दी मत बुद्ध प्रदान करो। अगले दीवान सजाउंदी आग्या होवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवन गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे।

पीड़ पई चित अवर न जानी। चरण कमल मन भवर ज्यों सुख संपट विच रहन विहानी। गुरु उपदेश न विसरै बाबी हे ज्यों आख वखाणी। गुर प्रसादी परम रस सहज समाद साध संग जानी।

जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिप्त न माया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु रूप साध संग जी, आप जी वडभागी हो जो हर रोज अमृत वेले गुरु कृपा गुरु बख्श सदका हाजरियां भर के गुरु दरबार दियां खुशियां प्राप्त करते हो। अज भी गुरुदेव जी की कृपा हुई है, सुभाग प्राप्त होया गुरु संगत का। सतगुरु दतार पिता महाराज ने पावन दीवाना की संपूर्णता से अज दे इलाही श्री मुख वाक बख्शिश किए हैं, जो जैतसरी की वार विचों पंचम पातशाह जी की पावन रसना तो उचारण ये पावन दो सलोक अते पौड़ी आप जी ने सरवण की है। गुरु कृपा करे सभना नू दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके सतगुरु जी निवाजन। अज पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु दतार पिता महाराज जी का शहादत गुरपुरब है। अज दे दिन दतार पिता महाराज ने लाहौर की धरती ते जालम जहांगीर ने जो फरमान सतगुरु जी दी प्रति लिया सी कि सतगुरु जी नू तसीहे दे करके शहीद किया जाए जा उन्हां नू इस गल लई मना लिया जाए कि वो सिखी नू त्याग देन इस्लाम नू धारण कर लैन, जो ग्रंथ उन्हां ने रचिया है उस ग्रंथ विच साडे मुताबक मुहम्मद साहब प्रति उन्हां दियां सिफतां दे सोहले पाए जाण। कई शर्तां गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी उत्ते लागू करना चाहते सन। खुसरो नू सतगुरु जी ने पनाह दित्ती, यह भी दतार पिता महाराज जी ते उन्होंने दोष मढ़िया। सो बेअंत कारण सन गुरुदेव पिता महाराज जी की शहादत के। सब तो वड्डा कारण जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की सतगुरु जी ने संपादना सानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह दतार जी की बाणी बख्शी, जो समुची मानवता के कल्याण वाली सच हक की गल करन वाली सच के मार्ग से तोरन वाली गुरु की बाणी सी। ये बाणी उन्हां झूठियां नू जालमां नू पसंद नहीं सी, इस करके गुरु साहब सच्चे पातशाह दतार पिता महाराज नू 1606 ईस्वी के अंदर लाहौर की धरती से बहुत तसीहे दे करके भुखे प्यासे रख के पानी विच उबाल के तत्ती तवी ते बिठा के तत्ते रेते नू शीस विच पा करके बेअंत तसीहे दे करके गुरदेव पिता महाराज जी नू शहीद किया गया। फिर दतार पिता महाराज नू रावी दरिया विच रोड़ दिता गया। अज भी गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन स्थान उस पावन दतार पिता महाराज जी की शहादत नू याद करवाउंदा है। ऐसे दीन दयाल सतगुरु दतार पिता महाराज जी की शहादत नू सतगुरां ने मिठा करके मन्निया ते इही दस्या कि सानू भी मिठा करके मनना चाहिए। ता ही पंचम पातशाह जी की शहादत ते सिखां वल्लों बड़ी श्रद्धा भावना प्यार सहित ठंडे मिठे जल दियां छबीलां लाईयां जांदियां हन, जो प्रतीक है जिवें पानी विच शीतलता है, पानी विच मिठास है, पानी विच रंग है। इसी तरह गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की शीतलता नू, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की मिठास नू, ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के अंदर उस सच हक दे रंग नू बयान करता है। ये पानी ये छबील ये गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने जो सानू सिद्धांत दिता है कि हर समय हर वक्त शीतलता मिठास प्रभु रंग प्रेम विच भिज के ही अपने जीवन का निर्वाह करना है। फिर तत्तियां तवियां भी मनुख दे अंदर नू साड़ नहीं सकदियां। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की शहादत नू कोट कोट नमस्कार है। सतगुरु कृपा करे सिखां नू कौम नू ये मत बख्शिश करे, ये भावना बख्शिश करे, वो अपने शहीदां दे दर्शाए हुए मार्ग ते चल सके। भुलां चुकां दी खिमा अज विशेष कीर्तन हाजरी होएगी सतगुरां दे शहादत दिहाड़े नू समर्पित 10 बजे तो लैके 10:40 तक आप जी ने हाजरियां भरनियां हन। ऐतवार दे दिन भी इसे तरह गुरदेव जी की शहादत नू याद किया जाएगा।
ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

नदरी कर्म लंगाए पार कोलो चखा चक्की चक थाल वारो ले बहुत अनंत लाटो माधानिया अन

अंदर सब को वेट कराएंगा, आपके लिए बुढ़ियाई में आपके क्रम कराएंगा। वो वटावट में दिनी सिरा सिर दे।

कहे जन नानक जेहा तू कराहे तिहा हो कई बखियान जाओ तो प्रेम खिलन का चाहो सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जाए

तुम मात पिता हम बारक, तुमरी कृपा में सुख, कोई न जाने तुमरा उचे ते सगल समग्री तुमरे सूतर, तुम ते हो सो आज्ञा, तुमरी गत मित तुम्ही नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दयावे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी, सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान धरके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया, देग चलाई तेग वाही देख के अंडिट किया, तिना प्यारियां सच्यारियां की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी साहब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते, बंद बंद कटाए, कोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया ने चराए, गुरुद्वारों की सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म निहारिया सिखी के सस्वत संसंग नभाई, तिना की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी साहब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे, चेतावन का सदका सर्व सुखोए, जहां जहां खालसा जी साहिब तह तह रशिया रियाए, देखते फतेह बिरद की पाए, पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखानु सिखी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, विसहा दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची, मत पत का रखा आप वाहिगुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जी। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया, खुले दर्शन दार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। इन माण्यो के माण, नितान्यो के तान, न्यूटियां दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ, दोए कर जोड़ करूं अरदास, तुद भावे ता आने रास। महाराज जी आप जी दे चरणा अरदास बेनती, आप जी की महान बख्शिश हुई, अमृत वेले आप जी ने अपने तख्तां दे प्रकाशमान होके संगत नूं दर्शन दारे बख्श के निहाल किया, अमृत वेले पावन हजूरी अंदर दीवान सजाए गए, सजो हे दीवाना विच संपूर्ण आसा की वार दे शब्द कीर्तन होए ने, उपरंत आए दे हुक्मनामे दियां विचारां होईयां, छे पौड़ियां आनंद साहब दे जाप होए, महाराज जी समुची सेवा निभाउंदिआं बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या विचारा करद्या आप जी की सेवा संभाल करद्या होईया बेअंत फुलां बख्श देनिया जी, अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उदम बख्शिश करना, बाणी का भाव आईया संगतां दे हिरदिआं ते वसाउणा, आईया संगतां दी हाजरी दर ते प्रवान करनी, सभना दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनिया, सभना नूं दरों करो नामदान, गुरसिखी जीवन बख्शिश करना, चढ़दी कला बख्शिश करनी, कृपा करनी महाराज जी, दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी, सुखां दा प्रकाश करना, देशां विदेशां विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जी, बिन संगतां दूर दुराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहीआं हन, जाप सरवण करदे आप जी दा धन्नवाद करदिआं, बेंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादारा सिंघा वास्ते ऑनलाइन भेटा की महाराज जी, सारी संगत की हारी दर प्रवान करनी, सभना की माया सफली करनी, किरत कमाइया बरकत पाया, श्रद्धा भावनावान संपूर्ण करनिया महाराज जी आप जी के चरणाज,
ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜੀ ਤਾਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ ਭਾਨੋ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਖ ਹਰ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹਿ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਨ ਹੋਜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ

जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया पर

हर कीरत मन पाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया तुर मस्तक भाग पुराण जियो तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग हर नाम में हर गुण गाया मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी हर नाम में हर सुहाया ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया मिल सतगुरु मनुआ मान जियो हर कीरत मन पाई परम गत पाई हर मंतन मीठ लगान जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो तिन हम चरण सरे वह खिन खिन पग तू वह जिन हर मीठ लगान जियो हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख भागा रत्ती चारे गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नामा कंठ तारे सब एक दृष्ट समत कर देखे सब आत्म राम पछान जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो सत संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर

दुख मिटे, हर रामै नाम समाया। हर जन प्रभ रल एको हुए, हर जन प्रभ एक समान जियो। तुर मरण लिखाया गुरमुख सोहाया, तुर मरण लिखाया गुरमुख सोहाया। जन उबरे हर हर ध्यान जियो। जग उपजै बिनसै बिनस बिनासै, लग गुरमुख अस्थिर हुए जियो। गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख।

जग उपजै बिनसै बिनस बिनासै लग गुरमुख अस्थिर हुए जियो। आसा महल्ला चौथा छंत

हम मूरख मुग्ध शरणागति, मिल गोविंद रंगा राम राजे। गुरपूरै हर पाया हर भगत

अकथा हर अकथ कथा किछ जाए न जानी राम। सुर नर मुन जन सहज वकानी राम। सहजे वकानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया। जप एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया।

जाए। प्रभ सुघर स्वरूप सुजान स्वामी, ताकि मिटै न दाते जल संग राती माछुली।

फिर एक बार ही दोनों परिवारों नूं लख लख वधाइयां जो सतगुरु सच्चे पातशाह ने महान बख्शिश की है। इस शब्द नाल ही कीर्तन समाप्ति है। आओ हुण अरदास विच शामिल होइए। बुलाओ फतेह जी, वाहिगुरु जी।

जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध्यावै ताय। सब थाई हुए सहाय।